0: मनु तुनाई दशम पहा अनु तुनाई दशम हाता लखंड रेडियो आईटीएन सभी श्रीलंकीय हंड
1: विलाव पसरे काए

सुनील सांतन की गी सुनील उनके पास हुए अब इटा आहान डलने बने उगा कलावटन आई वो डेनिस सोरेंगे हाँडी आई वो मैं गीत वाले डलावा दी बु पन मांगे तो ना मैं गीत वाले पैमेंट में उगा वैदगत तो ना केल गीते रचना के लिए अरिसेन अबुदु सोरेन अरिसेन अबुदु सोरेन फिल्म अद मातक सेमरुमाक अरगेना आपु अतुआग दिली माल प्रसंगे तुल आई वो डेनिस मैं गीते इदा गायना के लिए मैंने

0: चैनल लेके तवंगे अनिपत्त इन्ने का उन्नत गिनल्ला उगे रिदिकल हो रहा है उन्हों के लिए मंदर नो हम पुट्टा मुझे बेल्टे आके मदाग ना
1: एक मंदर
2: अत्यक्षण या इंतिक धर्म तिलका
1: लंकावे ओन तरम कांतावा निन्नवा श्री निन्नवा तमंगे पाउल थानीय में रखा बला गाना किसी में पुरुष एक के उदावक नहीं
0: ओन तरम किएने का ऐतुले मत ये नो नहीं हम तो ना मने किएने
2: माके इपरनी पेम्बती सत्यागा रात्रि हाताई तिहटा ITN बालाना
3: FM 93.5, FM 93.7, Lakhana, Radio ITN.

भावे शोक रोग भय अनतुरु अमनुष्य उपद्रव राज भय सुर सतुरु करदर गिनिबिय तिरिसंगत सतुन्गेन सिदुवन सियलु उपद्रव दुरिन तुरु वेवा।